माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान।

दरगे अंदर पाई है तगना टूट सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवनित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना अखी बेतगा आपे वते वट धागे अवरा कतै लै पाड़ करे व्याह कड कागल दसे राह सुन वेखो लोका होवे डाण मन अंधा नाउ सजान पौड़ी साहिब।

गौरी साहिब हो दयाल कृपा करता स्वीकार करे सी। सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी, हुक्म मने हवे परमाता कसमै का महल पाए सी। कसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी। तां दरगह पैदा जाए सी, तां दरगह पैदा जाए सी।

थोड़ी चाकर लगे चाकरी जे चल खसम पाए हुनम तुसनो गलियो बजो पे दुना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए बजो हो गवाए अगला मुहिमो पाना खाए जिसदा दिता खामना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म ना चल रही नाल खसम चले।

अम्बे सरोवर पागा जिसका बिसर प्राण पत दाता सोई गनहो अपागा चरण कमल जाका मन राग्यो अम्बे सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यो मन लागा रहो जह जह पेखाओ तह नारायण सगल कटा मह तागा

मन तन प्यास दर्शन कणि कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हाँ तिन के लागा पाए वेण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आ गाए आप त्याग विनती करहे ले हो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछुड़ कतहे ना जाए।

असो सुखी वसंदिया जिना माया हर राए असो सुखी वसंदिया जिना माया हर राए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे मा।

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख्यो सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन का आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्यो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरन काल का त्रास ने वरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तोज जू करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोह बध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचार।

अक्ष भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ।

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों ता गावहु हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं कर तेरा

तिथ तू समरथ जिथ कोई नाहि उथ तेरी रख अग्नि उदर माहि सुन कै जम के दूत नाहि तेरा।

छड़ जाय, पाओ जल विखम असगाहो, गुर सबदी पार पाहे, जिन कौ लगी प्यास, अमृत से खाहे। काल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए, जे आवै तुदयाहे। हाँ आया दूर हूँ चल कर, मैं तकी ताओ शरण आए जियो, मैं आसा रखी चित मह, मेरा सब दुख गवाए जियो। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहो। सत नाम साहिब सुरत

भुजंतिया सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी

से बिछोड़ कतहे ना जाए, प्राब वेण दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असो सुखी वसंदिया जेना मया हर राय।

असो सुखी वसंदिया जेना मया हर राय वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

करत षाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेवी, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परस गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही। सवना दावेसाहु, सजन सचा पातशाह, सिर सहांदे।

मिल हर जस गायो कोटलम के दुगवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्व सुख हर नाम डाई गुरु प्रसाद।

0: सिर हाथ धरियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो
1: हम अवगुण परे एक गुण नाहीं

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद नाम विस्माद नाग फिरे जंत विस्माद पान विस्माद पानी विस्माद अग्नि खे डेवडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सात लख प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिप्त विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर।

पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरिए साथ पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ गड़ी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी जेते मास

साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सुनाओ सकत बदार कहो कीरत कल सार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार दृष्ट तर्द तम हरन दहन यग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन सरन जाचक प्रतिपालन आत्म रथ संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे

0: सदा एक अकल रहे, सदा अकल रहे, करण सो इच्छा चारे, द्रोम स्पोर जो निवे, खवे कस बिमल बिचारे, ये है तत् जानियो, सर्व कट लख बिडाने, सहज पाए संचो, किरण अमृत कलवानी, गुर काम प्रमाण अजर जरियो, सत संतोख सुमायो, गुरु अर्जुन कल उच्चरे, जैसे है योग निज पायो।
1: मन विश्वास पायो, गहर गोदरह दियो, घर नास्ता नठ्यो, अमे अंतर्गत पियो, रिद विकास जाग्यो, लख कल धरी जुगंतर, सतगुरु सहज समाध, रव्यो समान निरंतर, उधारो चित, दार धरण, बिखंते कल मल त्रसन, सद रंग सहज गल उचरे, जस जंप लहने रसन।
2: सदा अकल लिव रहै, करण स्यों इच्छा चार है, द्रुम सपूर ज्यो निवै, खवै कस बिमल विचार है, एह तत् जानियो, सर्वगत अलख बिडाणी, सहज पाए संचयो, किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो, सत संतोख ग्राह जलियो, हर परस्यो कल समुलवै, जन दर्शन लहणे पयो, हर परस्यो कल समुलवै, जन दर्शन लहणे पयो।
3: नाम अवखद नाम अधार, अर नाम समाद सुख, सदा नाम निशान सोए, रंग रत्तो नाम सियो, काल नाम सुर नर बोए, नाम परस जिन पायो, सत प्रगट्यो रव लोए, दर्शन परसे गुरु के, आठ साठ मज्जन होए।

अमय दृष्टि शुभ करै हरे अग पाप सकल माला काम क्रोध अर लोभ मोह वश कर सब वाला सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म।

0: बन आवे।
1: देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो। रहस्य के सुरदेव तोह जस जय जय जंपे, असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपे। काटे सो पाप ते नरो के गुर रामदास जिन पायो, छतर सिंहासन पृथ्वी

0: अंतन पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी हुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप नशा दियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूस समाणे अनप नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज योग गुरु रामदास तुम रस जाने
2: जगत उधारन नाम सत गुर तुठे पायो

0: की गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सुख होटल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफ तख समी नूर अर सौ कुर सौ चटियै तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दयाहो। सज्जन

साहिब जी बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी पेर का मंगल गावे है।

मत अपने प्रीतम पावह सखी आओ सखी वस आओ सखी असी पिर का मंगल गावह ताजमान सखी ताजमान सखी मत अपने प्रीतम पावह ताजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरत विखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुर विधि न तावा नानक पायां पै करहो कृपा तामे मंगल गावा अमृत प्रय का नाम मैं अंदुले टोहनी

मोहनी महाबचित्र चंचल अनेक पाव दिखावे होए टीठ मीठी मनहे लाग नाम लेण ना आवे ग्रह बनहे तीर बरत पूजा बाट काट जोहनी

नहि चतुर सुगर सुजान बीते मोहे निर्गुण गुण नहि नहि रूप तूप नानैण बंक जह पावै तह रख तुही।

ज्यो जानहु त्यो मोहि रखहु, मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सराय, मोहे चात्रिक तुम बूंद, तृप्तौ मुख पर, मुख पर हर प्यास मेरी, जीअहिया प्राण पते,

हमारी होए गते चीत चितवा मिट अंधारे ज्यो आस चकवी दिन चरै नानक पायां पै प्रसंग मिली मछली नीर ना विसरै तन तन हमारे पाग कर आया पर मेरा सोहे बंक द्वार।

आनंद मंगल रस कणा नवल नवतन नाहो बाला कवन रसना गुण पणा मेरी सेज सोही देख मोही

मेरी से जसोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पायां पै मेरी आस पूरी।